प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue NE कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

आओ सुनिए प्यारे, गुरु रामदास साहब जी नु प्यार करते हैं ना, बचन सुनना हुक्मनामा साहब प्रारंभ करते हैं। जदो कोई नाम जपदा है ते इहदे नाल की साडी जिंदगी विच आ सकदा है ते आउंदा है ते आया कै, आओ प्यार।

0: परमात्मा करके किधरे चला नहीं गया, उन्हूं वेखदा रोज हर पल वेखदा है। जदो वो वेखना छड़ देगा ना असी रहना ही नहीं, वो इन्ना नेड़े है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिथे नाम जपण दा हुक्म देंदे सेवा करन दा, घड़ी मुड़ी एक गल कहिंदे उन्हूं नेड़े वेखो भाई, उन्हूं दूर ना समझो कि रब किधरे दूर है, वो नेड़े वे तुसीं किधरे दूर चले गए। महापुरखां ने इक लाइन वरती, वो कहिंदे कैसी खेड, परमात्मा साडे घरों कदे बाहर नहीं जांदा ते असीं कदे अपने घर पैर जिंदगी च पांदे ही नहीं। इत्थे बैठिया ते ख्याल करदे, घर गए ते ख्याल होर किधरे, इंडिया बैठिया ते ख्याल अमेरिका दे, अमेरिका च बैठे ते ख्याल इत्थों दे, घर आउणा ही नहीं। ते ओ रब घर से नाम जपांगे घर आवांगे, फिर कहांगे घर सुख वस्या बार सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाए गल्ला नहीं, एक प्रैक्टिकल करिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक एक बचन साड़ी जिंदगी नूं रंग लांदे। अज कहिंदे ओ वेखदा है कर करके बेपरवाह जी सदा कैम रहण वाला है।
1: वेकी वेकी जंत उपाए,
0: वेकी वेकी दा मतलब हुंदा है

साहिब गुरु रामदास पिता धन गुरु नानक साहिब जी आखदे पाई दुख दूर करन दा सुखी वसण दा आई तरीका जी इनू अपना लईए फिर लोक परलोक सुखेला होएगा। समाप्ति तो पहला एक प्रबंध अनाउंसमेंट है जी 11 मार्च तो 14 मार्च तक इस साल आ कुछ दिन रह गए अज 9 हो गए। शहीद भाई तारा सिंह वां पिंड वां तरन तारण विखे एक विशेष गुरमुख समागम किए जा रहे हैं। संगत नूं बेनती उन्होंने वध चढ़ के हाजरियां भरो जी मेरिया भुलां की खिमा करनी फिर सतगुरु जो सबब नान के चरण तोड़ लवांगे जी प्यार सहित फतेह बुलाओ जी दो पंक्तियां पढ़िए फिर फतेह बुलाते हैं जी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशन तो हफ्ते दे सत्तो दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 71718 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर कैलगरी।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: ये है सत्यार्थ प्रकाश और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए। इसके ऊपर अकबड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहां से छपा है? ये सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संवंत है, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य है महर्षि दयानंद के। आग गए इतनी लंबी फीत और फिर महर्षि दयानंद और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी ला दी श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है और प्रकाशित है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से छपी है। अब इसमें आपको सातवें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है सप्तम समोल्लास यानी सातवां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। पृष्ठ 154 पर इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है वा निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का के निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता, क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहायता का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? या स्वयं कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपुण आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है, फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञान हीन प्राणी ऐसी उबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता, और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समुल्लास चल रहे हैं और 17 प्रकाश है ये, इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, यहां और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को, जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं, औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है, जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला, वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुटी लाए बैठा है, नकली बोर्डदार है, जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान पर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं, साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या, जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दान सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है, इसको कह के भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने हकर कमल से, और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा की गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है, और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था, अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, घोर एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवेदनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवेजनम, एनस्य माने अपराध के, अवेजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवेदनम माने विनाश करने वाले हो, पितर करते से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवेदनम माने नाश करने वाले, अवेदनम विनाश करने वाले हो, अवेदनम माने विनाश करने वाले हो, एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवेदनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवेदन माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ना लिखा, जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है, उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समुल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर, यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस इसी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला नो सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे, जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते, इस 7वें समुल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वह भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्सर ज्ञान युक्त है और इनसे जिसा भी अनुवाद बिना इन्होंने अनुवाद किया है और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा है परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र, इसके यहां पर ये अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, हम यहां लिखेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के एनएसए माने अपराध माने यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनस्य मान्य अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है वा निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि जहां यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं, इत्यादि सतपत ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर दूसरे में। अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3, इसमें भी अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर और पांचवें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर और फिर सातवें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वें अग्नि शब्द नहीं है, 9वें अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है, और सत्यार प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा ये सत्यार प्रकाश है और ये कहां से छपा है, ये आपको बताया था वैदिक केति मंडल, ये इसका प्रकाशक है, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा सत्यार प्रकाश, ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है, यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, प्रश्न नंबर 17 पे प्रथम समुल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह, इस महर्षि दानंद जी ने केवल डेढ़ वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो ढाई वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा उनमें से एक साम वेद अनुवाद किया गया, ये यजुर्वेद और साम वेद इकट्ठा ही जिल्द किया गया है, अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश राणी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बागनी दिल्ली से। अब इसके इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है, सामवेद भाषा भाषम ये प्रथम अध्याय है, और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्निम माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी दसवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके, वेदों को समझ कर इसकी रचना की, सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदों अनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं, परमात्मा सशरीर है, वह मनुष्य दृश्य है, ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है, महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है, वेदों का केवल अनुवादक है, जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। पांचवें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है। पांचवा अध्याय इस पंचम अध्याय आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में ये प्रथम मंत्र में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। दो बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख जाएंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते यह लोक तरमावि से विवर्ति। अवे ईश्वर है वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट इन ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं, प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र। वह इसने के बठा बठा रखे अनुवाद में,

की पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो दो बार दिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें, प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सजनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल ग्रहण करता हूं, भगवान शर्म मारेगा पत्थरों का और काठ के मुसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना, कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल नो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर। और आगे देखना इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं, चोर चुरावे तुम्बड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपराव न सच्चाई छ नीना। यहां देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद, महर्षि दानंद जी का अनुवाद, यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते यानी जगदीश्वर, आप वा बिजली, बिजली गे लड़ाई दी इसमें, आपका बिजली परमेश्वर या बिजली दोनों लिख लिए, बिजली भी सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं, इसलिए उस आप वा बिजली के बिजली में मैं पूर्वोक्त वर्तों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं, जो यह तव माने आपका, आप और उसकी, उसकी नहीं, आप तो माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है, आप तो माने आपका, यह आपका तनु माने शरीर है, हैं वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनूर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगो, तुमको यह जो इस अग्नि बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है, परमेश्वर का, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। हाय हे मनुष्य लोगो, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तम तासे सेवन हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी, इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर स्थित होने लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ इसका, इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बगत तनूर, तनु ये तनु है, वरिष्ठा तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में

0: यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा आय है। इसका अलग अलग अलग इसने केवल दो बार लिखा तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आ गई अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को, ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है, यही महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ए महान इंद्र नरवत, हे बड़े महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो अच्छी प्रकार, सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं, यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है, इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा, ऋग्वेद ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है प्रथम मंडल, और ये कहां से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मेरे सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है, इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि अंगीरसवत अंगीरा है, इसने क्या लिखा है मनुष्यवत मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं मनुष्यवत माने मनुष्य के समान मनुष्य के तुल परमेश्वर, आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो, उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था अध्यक्ष लिख दिया हे पवित्र अंगीर माने शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक ये अग्नि माने परमेश्वर, अब पूर्ववत जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ रखी है इसने, अंगीरसवत माने शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए, उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था, आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं। जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये छपा कहाँ से, यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है, ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था कबीर देव, इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं, हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाणे में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी, इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा है तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव, जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा ये महर्षि दान सरस्वती का अनुवाद है, ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है, यहां अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दान सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, ये दान सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये यजुर्वेद भाषा भाष्य है और ये है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु लिखा है यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है, यहां लिखा है इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है और यदि यहां यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में, इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहां परमात्मा कवि, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब, हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, यहां से ये छपा है, प्रकाशक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें, ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, दो अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहां लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव, ये कबीर साहब लिखना चाहता, कबीर परमेश्वर, तो यहां केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चलकर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां लिखेंगे जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, द्यूलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है, यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे द्यूलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां आते हैं मंत्र नंबर 1, देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरुसे माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला, अर्योदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह राजेव राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे, और यहां पर लिखा कि वो राजेव राजा के समान, इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं, 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ वर्णीय माने श्रेष्ठ भगत पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है, ये देखिएगा दूसरे मंत्र में वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहां पर, कबीर कुल पाठ में कबीर, कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो, आप, ये फिर सर्वज जी लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आगे आगे आप पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपना आत्माओं इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है, और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6660 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near

सर्विसेज प्रदान कर देने। इना तो किसी भी तरह दे नमे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ली तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570 65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4060 या विजिट करो www

गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: वार श्लोका ना श्लोक ही महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुम्हें श्लोक महला पहला
1: बलहारी गुर अपने दुहा।

जन नानक सतगुर मेर हरे जगत ते तेरिया जन नानक सतगुर

सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जेब विच बंदी वेखण को दीदार इंदो साला ही साला हां दर्शन रूप अपार तीर्थ ना व्यर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन ध्यावन जिते लखना।

0: दिन तोर लिखतल लाटल पासे लिखासे। सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदिया है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात पढ़िए, जिते बरस बरस पढ़िए, जिते मास पढ़िए, जिते यार जा पढ़िए, जिते सास। नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु पेख किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना की। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पार, बस्त ना पहरे अहनस कहरे, मौन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता।

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू चा साहिब शिष्यो जिनकी दिसों पर पया कहो दान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं पराकृत

ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ।

अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वास कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जात।

ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਦ।

0: चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नव नित अपे रसन ऐन सरस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो वचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधर हो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो।
1: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर आगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनिस करो बचन गुर हृदय धर हुन गुरु जल बिमल था मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय उदत गुर गैर गंभीर बेअंत हर नाम न गहीर मन मिलत लिव लाइय हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइय अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सार संत सिख नाइय नाम निर्वाण निधान हर और तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय।
2: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरै एक नाम रग तजो

हम गर्भ निवारियम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जालिया मिलयाधार सतगुर भिखिया देह में तो समर्थ दातार गर्भ निवारियम काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जालिया नाम मिलयाधार एहन स नवतन निर्मला मैला कबहू ना

महला पहला इको कंत सबाईया।

ಜನಕ ಕಂತರತಿಯ ಪುಚ್ಛ ಬಾತಡಿಯ ಮಹಲ್ಲಾ ಪಹಲಾ

गोर मुख लेहो मिलाए, जान पावे नाम हर, अनहद शब्द बजाए, ज्योति ज्योत तार, हृदय हर गुण गाए, जय जय शब्द हर, जग मह वरत आप, हर सिति प्रीत कर, जग मह वरत आप।

0: नानक मेर शरीर का एक रथ कृत वाहो जुग जुग फेर वटाइया है ज्ञानी बुझेता है सतयुग रस संतोख का धर्म गिरथवाओ त्रेते रथ ते का जोर गिरथवाओ द्वापर रथ पे का सत गिरथवाओ काली गुरथ गण का उड़ गए रथवाहु महला पहला
1: साम कहे से तंबर स्वामी सच में आशय साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे आपर पूर राम नाम दिवा मैं सू नायले प्राश्ना है नानक तो मुखंतर पार जुज में है जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पहया पार जात को पीले आया बिंद्रवर में रंग किया कल में दे अतर्पण हुआ ना खुदाई अलह पया नील बस्तर ने कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुण चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए कौ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु।

사랑 사적 간단 시리 하름 만다라 사헤바지 비켜 딴나 딴나 사트그루 시리 그루 가란타 사헤바지요 마하라즈 아버지 대하주랑 샤바드 짱키 आनंद साहेब जी की अरदास उल चुप मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी आओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी आं सरबत साध संगत नूं अपने दारां घरां सिखी सिद्धक भरोसा नामदान बख्शना शुभ पावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित्त आवे सिखा।

0: ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाई तोती टिका तै जब माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहि तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज श्री वगाइन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना

ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭ ਸੁਧ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ।

ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ

पहला स्टॉप होए सुचे बैठाए।

हरता के पारावार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, इकना अगली जिंदी रही है क्रिचड़े बिसियार।

काम क्रोध अहंकार लव लोभ पर जलिया नाम मिलया धार एहनिस नवतन निर्मला मैला कबहू न होए नानक एह बिद छुटिया नदर तेरी सुख होए महला पहला इको कंत सबाइया जिती दर खड़िया नानक कंत रतिया पुछ बतड़िया महला पहला सब कंत रतिया मैं दोहागण कित मैं तान अवगण इतड़े खसम न फेरे चित महला पहला हाँ बलहारी तेने का सेवत जिना दवात सब राती सोहागणी एक मैं दोहागण रात पौड़ी दार मंगत जाच दान हार दीजै कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जान पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग महवरत आप हर स्थिति प्रीत कर जग में

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: यानी 4039030483 ते संपर्क कर सकते हो। एमएनडार रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेहें मिलंत जम त्रास मिटाई।

राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखो शरणाई।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

संत की रहत सुनो मेरे पाई, उआ की महिमा कथन न जाई। संत की रहत सुनो मेरे पाई,

मुसलमानी योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख दे मालिक धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो जिन्हां उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नजर करके इस संसारिक पदार्थवादी माहौल विचों सतसंगत दियां अमूलक घड़ियां बख्शिश करके नवाजिया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर संत दी साधु दी गुरमुख दी गुरसिख दी परिभाषा भी बयान कीती है और सतसंगत वड्याई भी कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने इस गल का जिक्र किया कि वड्डे वड्डे राजे रियासतां दे मालक वड्डे वड्डे किलियां दे मालक संसार तो विनस जांदे ने और सतसंगत उन्हां दीआं यादां भी नाल ही मिट जांदीआं ने। राजे रईयत सिकदार कोई ना रहसीओ हट पट्टण बाजार हुक्मी टैसीओ वड्डे वड्डे बादशाह राणा राओ न को रहै रंग न तुंग फकीर वड्डे वड्डे बादशाह इस धरती उत्ते सिकदारी करन वाले लोग चले गए सतसंगत उन्हां दे मरण तो बाद उन्हां दीआं यादां भी नाम भी सहजे सहजे धरती तो खत्म हो। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने जिक्र किया भाई संत इस धरती ते सदीवी रहिंदा है वो शरीर करके चलिया भी जांदा है पर सदियों तक उहदा नाम धरती उत्ते रह जांदा है क्योंकि चार हस्तियां ने जिन्हां दा नाम बरकरार एक अकाल पुरख वाहिगुरु उहनू कोई भावे राम कवे अल्लाह कवे वाहिगुरु कवे गोविंद गोपाल बीठल नारायण एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की हस्ती मौजूद है ते दूजा अकाल पुरख का नाम धरती ते रहिंदा तीजा अकाल पुरख तो वरसाए हुए अकाल पुरख का रूप सतगुरु इस धरती ते रहिंदा है ते चौथा पातशाह ने जिक्र किया अकाल पुरख का नाम जपन वाला संत साधु भी इस धरती ते रहिंदा। श्लोक तुहानू याद है जिथे महाराज किसी ने नाम रहे हो साधु रहे हो रहे हो गुर गोबिंद कहो नानक जगत में किन जपियो गुरमंत। संत शरीर करके उम्र बतीत करके चले जाते हैं पर सदियों तक उन्हों का नाम रहिंदा है। सतसंगत तो क्यों उस शरीरधारी संत के मुकाबले अरबां खरबां की जायदाद के मालिक लोग धरती ते रहिंदे ने उन्हों का नाम क्यों नहीं रहिंदा। साधु दे कोल सिर्फ कुली होवे रहन वास्ते उहदा नाम तां वी बरकरार रह जांदा है जिन्हां कोल वड्डे वड्डे किले सन उहनां दा नाम बिनस जांदा है। कुछ सालां बाद लोक भुल जांदे ने तुहाडी जिंदगी दा तजर्बा रहेगा अरबां दी जायदाद छड्ड के मरन वाले लोग साध संगत वध तों वध पुत्र प्यो नूं याद करदे कि मेरे प्यो ने 40 किले जमीन दे बनाए आ सब कुछ मेरे प्यो दा बनिया होया इन्ने ट्रक मेरे प्यो दे। पर माफ करियो मरण तो बाद जिन्नी देर पुत्र जीउंदा है शायद उहदी वड्डी तस्वीर किसी ड्राइंग रूम जां लॉबी विच लगी रहे कि सच है पुत्र दे जाण तो बाद पोतियां दा जमाना आउंदा तस्वीरां पिछले कमरियां विच चलियां जांदियां नाम मिट जांदे ने। साधु दा नाम रहिंदा क्यों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी ने जिक्र किया संत की रहत सुनो मेरे भाई ਪੂਆਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨੈ
एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। ये संत दी रहत है, ओना जीवन नाम है। संसार विच आम बंदा किवें जीउंदा है ते संत दी जीवन शैली किहो जिही है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा, आठ पहर 24 घंटे 24 आवर। संत अपने जीवन विच इस गल दा अभ्यास पकाउंदा है कि रब मेरे नेड़े है, रब मैनू वेख रहा है, रब मेरे नजदीक है। साध संगत तो शरीर धारी संत दा अभ्यास इन्ना क पक जांदा है। 10-20 सालां विच अभ्यास जदों बिल्कुल पक जाए, पहला संत इस गल दा अभ्यास करदा है कि संत मेरे अकाल पुरख, रब मेरे नेड़े है, रब मेरे नजदीक है, रब मैनू वेख रहा है। जदों अभ्यास 24 घंटे पक जाए, एक दिन संत दे जीवन विच अचानक घटना घटदी है। पहला अभ्यास करदा है रब मैनू वेख रहा है, फिर शरीर धारी संत खुद रब नू वेख लैंदा। जिदन ओ रब नू वेख लैंदा है, उस दिन तो बाद वो खुद रब हो जाता है। हुणे गुरमुख प्यारे महापुरश बचन कर रहे सी बैठे हां, हुण दे जमाने विच कथा करनी बहुत औखी हो गई। क्यों? साध संगत संत शब्द रसना तो निकलदा है, लोग कन्न खड़े कर लैंदे ने, ओहदे उत्ते तर्क पैदा हुंदे ने। इह सिख कौम दी बदकिस्मती है। ज्ञान होना चाहिदा सी, पर ज्ञान दे नाल नाल इन्ना तर्क नहीं सी होना चाहिदा। असी हर गल उत्ते तर्क करन लग। मैं एक दिन दरबार साहिब तो ही लाइव एक कथा कही, इह गल सच है साध संगत, दुनिया विच नकली सोना नजर आउंदा है, बाजारां विच विकदा है, इहदे विच कोई शक नहीं। आर्टिफिशियल गहने लोग पहनते ने, इहदे विच कोई शक नहीं। आर्टिफिशियल सोने दे गहने सस्ते मिलते ने, यह सच है। आर्टिफिशियल गहनिया की चमक बहुत होंगी है, यह बिल्कुल सच है। पर साध संगत यह सच नहीं कि दुनिया विचों सोना खत्म हो गया। सोना भी मौजूद, दंभ ते पखंड संसार विच हो सकता है, दंभी पखंडी हो सकते ने, पर साध संगत यह गल सच नहीं कि दुनिया में संत मौजूद नहीं। भगती सेवा ते सिमरन वाले संत अज भी मौजूद। यह ठीक है सोना घट हो सकता है, लोगों को ग्रामों विच हो सकता है, किलों ते क्वंटलों विच नहीं, पर इस गल तो मुनक्कर नहीं हो सकते कि संत मौजूद नहीं। घट हो सकते ने, पर संत जरूर मौजूद है। इसलिए सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कहा, संत जदों रब नू वेख लैंदा है, वह रब का रूप हो जाता है, संसार के बंधनों तो बहुत दूर निकल जाता है, इन्ना क निर्मल हुंदा है, ओदी संगत करन वाले लोग निर्मल होने लग पैंदे ने। माफ करियो, ओदी रसना दे बचन दूजे नू बिल्कुल निर्मल कर दिंदे ने। इत्थों तक के हकीकत है, संत कुछ भी ना बोले, ओ अख नाल एक दृष्टि भर के किसे वल वेख लै, सामने वाले दा जीवन बदल दिंदा। सामने साक्षात दी गल छड्डो, सिख कौम विच एक विद्वान ने हुण कथा वाचक जिन्हां दा बड़ा मान सत्कार है, उन्होंने खुद राणा साहब की स्टेज तो थोड़े साल पहले गल सुना दिती। ते जदों मेरे नाल गल हुई, साध संगत ते सच है, मन दे अंदर बंदा महसूस करदा है, जिहड़ा सच होवे उहनूं जरूर बोलना चाहीदा। सत्कारयोग ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, वह 1994-95 विच दुखनिवारण साहब कथा करदे रहे। गुरद्वारा साहब वाले ने घर खरीदे, घर खरीद के गुरद्वारा साहब का स्थान वड्डा करना, उन्हें खुद सुनाया, जिन्हों को घर खरीदे वो ढा के जो उत्थे सफाई हो रही थी, कन्ना ढह रही सन, जगह वड्डी हो रही सी, महापुरशां दी कोई फोटो वो बिल्कुल उत्थे इट्टां विच पई सी, कुवार राह लंघन लगे कह लगे मेरी नज़र पै गई। तो जो मैं फोटो वेखी, वो तुसीं दर्शन कर दे, पिछे लाल कपड़ा इस तरह चौंकड़ा वज्जा होया, बाबा जी ने हथ खड़े, वो कहिंदे मैं इस तरह वेख के कहा, यह की दंभ पखंड है, हथ चुक के आशीर्वाद दे रहे ने। साध संगत नाल उन्हें अफसोस भी किया, एहो जिहा तर्क अंदर जीवन में आना नहीं चाहिए, बंदे नूं खुश कर दिंदा है। खैर वह कहते पहला मन चाहिया, एक ही दम खंड है, मैं फोटो वेख के लंघ गया, ते फिर एक पल दो कदम अगे जाके मन च ख्याल आया, मना संत जान के रहन दे, साधु संत ब्रह्म ज्ञानी कुछ भी ना समझ, गुरसिख जान के फोटो चुक लै, कम से कम दस्तार है, दाड़ा कोई उपरों लंघेगा, धूड़ मिट्टी पैगी, व्यद भी होगी, कह लगे मैं वो रस्ते विचों फोटो चुकी, ते झाड़ के लै गया घर। घर जाके घरवाली नूं कहा, लै भागवान ने महापुरश आ गए ने, आशीर्वाद लै ला जी।
ਉਹ ਫੋਟੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਕਹੀਦਾ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਲਟਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ

0: सतगुरु कृपा करन समुची सिख कौम उत्ते, सतगुरु जी तरस कृपा करके शरदा प्रेम भावना बख्शिश करन, क्योंकि हुण ना तो प्रचार की कमी है ना प्रचारकां की कमी है, साध संगत प्रेम की कमी है। सतगुरु कृपा करन साडे अंदर प्रेम पैदा होवे, शरदा प्यार पैदा होवे। जिहड़े असीं तर्क करी जांदे नहीं जी गुरु ही संत है, गुरु वास्ते संत शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो, गुरु संत नहीं है, शब्द गुरु वास्ते संत वरते है, भाग हुआ गुरसंत मिलाया। पर सात संगत गुरु की हस्ती बहुत वड्डी है, गुरु तो एक दृष्टि किसी शरीर धारी ते पाल, एको दृष्टि नाल कोई भी शरीर धारी मनुख संत हो सकता है। ये गुरु विच इन्नी वड्डी पावर है, गुरु नू एवें ना समझिए। पातशाह ने कहा पूरा गुर शब्द तुहानू याद है, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पिख है, होए संत गुरु एको ही अमृत दृष्टि पा दे उन्हूं संत कर दे। सतगुरु कृपा करन साडे अंदर भावना प्रेम जगे, इतफाक सतगुरु बख्शिश करन। गुरमुख प्यारियां दा धन्नवाद।
1: कैलगरीच इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 1098th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन और निर्भय पद पाया।

नानक कहत चेत चिंता मन तैपी उत्तर है पारा अदा मल पापी जग जाने।

0: ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ 116 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਸਲੋਕ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਗ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ। ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 15 ਰਾਗ ਹਨ। 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਔਰ ਸਲੋਕ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਤਿਆਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤਿਆਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਅਹਿਨਸ ਭਾਗੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪਿੱਛੇ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਆਖਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 57 ਸਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਤਿਆਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਅਹਿਨਸ ਭਾਗੋ। ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਲੋਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਉਰ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਗਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮਨੀ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ दस तुहारो हुए जेदे कहिंदे सिमरन दे नाल तेरे कहिंदे दर्शना दी जिहड़ी आ ना महाराज त्याग दी गल करदे आ त्याग ते आई है साधो मनका मान त्यागो। हुण दूसरा शब्द उहनां दा बैराग है जी। महाराज दा बैराग ना सनातन मत वाला बैराग नहीं है जी, बड़े ध्यान देना। उहनां दा बैराग की है, दो चार बच्चे पैदा करो, दस बारह साल घरवाली नाल रहो, जदों बच्चिया ने कुछ मंगा शुरू करतिया ते असी ते हुण जंगलां विच चले आ जी, हुण साडा कोई इस संसार नाल लैण देण नहीं। महाराज कहिंदे बिल्कुल नहीं, कहिंदे महाराज कहिंदे मैं तैनूं दसदा भी किद्दां बैराग विच रहना। उहनूं महाराज कहिंदे काहे रे नर, महाराज कहिंदे तू जंगलां दे विच किद्दर नूं, कहिंदे काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी, ओ तां तेरे नाल कहिंदे हमेशा कहिंदे रहा, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोहक मत ज्यो बस बसत है मुक्कर माहे जैसे शाई, तू किथे रब नूं लभन चलिया तैसे ही हर बसे निरंतर। वो तो तेरे नाल है महाराज कहिंदे, और नाल नहीं महाराज तू तेरे अंदर बैठा होया, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई अपने अंदर, कहिंदे उहदी खोज कर। आ बैराग है गुरमत दा। महाराज कहिंदे इसे बैराग दा जिक्र ना गुरु गोबिंद सिंह जी करदे आ जी। महाराज कहिंदे रे मन ऐसो कर संन्यासा बसे सगन सबे कर समझो मन ही माहे, किथे जंगलां नूं चलिया घर नूं ही जंगल बना, कहिंदे घर नूं जंगल उदों बना जदों न्याणे सुते है, घरवाली सुती है उस समय उठ के कहिंदे चौंकड़ा मार के बह जा, उही तेरा जंगल बन जाएगा। रे मन ऐसो कर सन्यासा बसे सदन सबै कर समझो मन ही माहे, उदासा आ काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोहप पोहप दा खरी अर्थ है फुल, पोहप मत ज्यो बास बसत है जिस तरह एक फुल दे विच सुगंधी है, मुकर माही जैसे शाई हर शीशे दे विच कोई ना कोई उदा परछावां बनदा। तुसी शीशे नू लख पर्दियां दे नाल ढक दिओ लेकिन उहनां पर्दियां दा परछावां भी शीशे विच दिखाई देवेगा, तुहाडा बेशक नहीं लेकिन उहदा परछावां जिहड़ा दिखाई देगा। महाराज कहिंदे इस तरीके दे नाल परमात्मा तेरे अंदर वसिया। तीसरा असीं कहिंदे आ अनुराग। अनुराग दा अखरी अर्थ है उहनां दे अंदर प्रेम, ते आपां मंगलाचरण दे विच शब्द लिया महाराज दा शब्द लिया सी। महाराज कहिंदे रे मन ओ मेरे मना ऐसी हर स्यो, महाराज कहिंदे रे मन राम स्यों कर प्रीत, उस परमात्मा दे नाल कहिंदे प्यार पा श्रवण गोबिंद गुण सुनो। बड़े ध्यान दे नाल इन्हां गल्लां, एक कान जिहड़े लाए ना महाराज ने एक परिपूर्ण परमात्मा दा जस सुनन वास्ते लाए है। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी कहिंदे मेरे मोहन श्रवणी इह ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए। महाराज कहिंदे नहीं, कहिंदे महाराज कहिंदे रे मन, महाराज कहिंदे उहदे नाल कहिंदे प्रीत कर, उस परमात्मा दे नाल कहिंदे प्रीत कर। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। फिर महाराज कहिंदे कर साध संगत, इत्थे आ कहिंदे कर साध संगत सिमर माधो, सिमर माधो उहदा सिमरन कर, उहदी याद विच जुड़ अपने आप नूं टिका कर। महाराज कहिंदे कर साध संगत सिमर माधो, हो हे पतित पुनीत क्योंकि काल ब्याल जिउं परयों डोलै। बहुत गल कीती है गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने मौत दी, काल ब्याल जिउं परयों डोलै मुख पसारे नीत, अज काल कुन तोहे ग्रस हो समझ रखो चीत। ते माखरी पंक्ति कहिंदे कहे नानक राम भजलै जात औसर बीत। महाराज कहिंदे उहदा नाम दे नाल जुड़, सिमरन दे नाल जुड़, ए तेरी उम्र जिहड़ी है ए लंघदी पई है।
1: मन रे प्रभ को शरण विचारो,
0: इस जो अज महाराज ने शब्द साडी झोली विच पाया, इस शब्द दे विच महाराज ना चार उदाहरणा दे जिक्र करदे। वैसे दो हफ्ते पहला भी ए हुक्मनामा जो सीगा ओ आप जी ने सरवण कीता, मेरे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब पैपिंदरपाल जी उस समय उन्हां दी हाजरी सी, इहो शब्द सीगा उन्हां दे कोल, इहो शब्द सीगा उन्हां ने इन्हां दी विचार कीती। मेरे ख्याल आप जी नूं नहीं याद होणा, बस अच्छे ही है। सानू पता होना चाहिदा कि केड़े प्रचारक ने केड़े वेले की बोलिया। एक बारी ना मैं किते कथा कर रहा सीगा, ते कथा करन तो बाद मैं गुरुद्वारा साहब तो बाहर आया, ते पांच सत बीबियां कहंदियां, कहंदे भाई साहब जी अंदर तुहाडी कथा हर एक गल समझ आउंदी है, पर जदों असीं बाहर आउंदे आं ते अद्धी क भुल जांदी है। लंगर हाल च जाने हैं तो होर तो घर जाने हैं तो सारा कुछ, तो कहते इहदा की कारण है। मैं क्या कारण इहदा इक्को ही है, तुहाडे घरां दे विच तुसीं रसोईयां दे विच सब्जी बनांदियां, कहंदे हां। मैं क्या सब्जी बना के ढक के रख दियां जां उत्तों ढक्कन ला के नंगा रख दिंदी आं, कहंदी नहीं ढक के रख दियां। मैं क्या ढक के क्यों रख दियां, कहंदे उह बची रहे। तो मैं क्या बस गल इहो ही है कि जो असी बचन सुनिया ना उन्हूं असी चुपचाप मूंह ते ताला मार के ते अपने नाल घर तक लैके जाइए, फिर वह बचन जिहड़ा साडे हिरदे विच रहेगा। नहीं तो इत्थों निकले ते गल्लां कर लईआं, गल्लां कर लईआं ते वह जिहड़ा कुछ सुनिया सी वह सारा। महाराज इस बचन दे विच, इस शब्द दे विच चार उदाहरणां देणगे जी। पहली उदाहरण महाराज देणगे गणका दी, लेकिन महाराज फिर महाराज उदाहरण देणगे ध्रुव दी, फिर तीजी महाराज उदाहरण देणगे हाथी दी, ते चौथी उदाहरण देणगे अजामल दी। इस चार ही जिहड़े आ ना अपने जीवन तो डिगे हुए सन, ये चार ही जिहड़े आ अपने जीवन तो डिगे हुए सन। बेशक महाराज ने यह उदाहरणा जिहड़ियां पुराणिक उदाहरणा लईआं, परंतु महाराज पुराणिक उदाहरणा लै के सानू समझाणा करदे आ कि मन रे प्रभ की शरण विचारो। जे उहदी शरण विच आ जावे ना, जे उहनां दा उधार हो सकदा ते तेरा भी जिहड़ा उधार जिहड़ा वह हो सकदा। महाराज आरंभ वालियां पंक्तियां च फरमाउंदे मन रे प्रभ की शरण विचारो। थोड़ा जिहा शरण शब्द दे बारे देख लईए आपां, असीं बड़े वचन पढ़दे हां शरण दे बारे, साडे कोल प्रमाण। महाराज कहिंदे सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। चिंता लाहे एक उदाहरण, एक साखी दे नाल मैं आप जी नूं जोड़ा। जिहड़े गुरु की शरण विच आउंदे हन, महाराज उन्हां नूं फर्शां तों लैके अरशां तक पहुंचा दिंदे हन। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जिहड़े गुरु की शरण विच आउंदे हन, महाराज उन्हां नूं मिट्टी तों चक के तखत ते बिठा दिंदे। सौखा कह दिया फर्श तों अरश, मिट्टी तो चक के उन्हें तखत पर बिठा देंगे है। तो जो गुरु की शरण तो बाहर जाते हैं ना, अपनी मन मर्जी करते हैं, महाराज उन्होंने तखत तो चक के उन्होंने मिट्टी के रोल देंगे। उदाहरण तो सामने साखी थोड़े को, तन तन गुरु हर राय साहब जी महाराज, उन्होंने अपने वड्डे पुत्र बाबा राम राय को दिल्ली भेजिया, उत्थे जो कुछ होया आप जी को पता। महाराज ने कहता इधर वापस नहीं आना, हो तू कीरतपुर साहब नहीं आना। चलो औरंगजेब ना रल गया, औरंगजेब ने उन्हें जगह देती। मैं ट्यूक मात्र साखी लैनी, पूरा नहीं उदा विस्थार करना। तो उदा अंत किदा होया, देखो गुरु घर विच सी, गुरु घर का पुत्र सी, अरशों ते सी। जे गुरु की इज्जत हो रही है, रिस्पैक्ट हो रही है, तो पुत्र की इज्जत भी हो रही है, पुत्र का सत्कार भी हो रहा। लेकिन उन्हें ही उदे साथियां ने जिहड़ा सीगा वह देहरादून की धरती से उन्हें रजाई दे विच उन्हें नप के उन्हें मार दिता। जिहड़ा अरशां ते सी वह फर्शां विच, क्योंकि गुरु की शरण वह छड़ के गया। दूजे पासे आओ जी आपां, आगरे की धरती से भाई नंद लाल, जिन्हों औरंगजेब ने कहता या तो मुसलमान बन जा नहीं तो मरने तैयार हो जा, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म तो इलावा किसी होर धर्म के एडा वड्डा विद्वान नहीं देख सकता। उन्हें एक आयत के अर्थ किए ना भाई नंद लाल जी ने, एक आयत के अर्थ किए जोड़े उन्होंने मौलवियों को नहीं हुए। तो औरंगजेब में जो पता लगा भी है तो हिंदू है, कहते या तो मुसलमान हो जा तो या कहते मरने तैयार हो जा। आगरा छड़ के गुरु की शरण में आया आनंदपुर साहब, तो अज हरिमंदर साहब के भाई नंद लाल जी की रचना जी है वह बड़े शान ते शौकत दे नाल जिहड़े कीर्तनीए वह गाउंदे ते जदों भी। और गुरु तेग बहादुर जी बारे जे गल करिए ना, तो गुरु तेग बहादुर जी जदों सिफत करदे ना, तो गुरु तेग बहादुर भाई नंद लाल जी कहिंदे गुरु तेग बहादुर आ सरापा अफजाल,
2: गुरु तेग बहादुर जी के सिर तो लैके पैरों तक सराटा मैंने सिर तो लैके पैरों तक परिपूर्ण परमात्मा की बख्शिश है। गुरु तेग बहादुर आ सराटा अफजाल जीनत आ राए महफले जहो जालाल। जदों गुरु तेग बहादुर जी महाराज संगत में दर्शन देंदे ना उस समय उन्होंने चेहरे का रूहानी जलवा जरा ना वो देखने वाला जाहो जालाल जीनत आ राए महफले जाहो जालाल। मैं तो बेनती की जो गुरु की शरण में आए गुरु ने उन्हें फर्शा तो चक के अरशा से पचा दिता ते जिहड़े गुरु की शरण तो बाहर गए गुरु ने उन्होंने गुरु ने की करना वो अपने आप ही अरशा से बैठे सी फर्शा के विच आ गए। महाराज कहिंदे मन रे प्रभ की शरण विचारो जिस मृत गनका सी उदरी ताको जस उरतारो। जिस मृत कहिंदे देखो गनका जिहड़ी गनका दे मैं सिंपल अर्थ कर दिया जी शी वाज अ प्रोस्टीट्यूट वो एक वेसला सीगी जी जो इतिहास में लिखा होया और गनका का जिक्र जरा ना भगत नामदेव जी कहते हैं सूआ पढ़ावत गनका तरी सूआ मैंने तोता तोता अगे अगे बोलता सी गनका उच्चे पिछे पिछे चलो गनका एक वेसवा सी। गनका दे वैसे अर्थ विद्वाना ने पता की किते है कहते जिस औरत का शरीर एक मर्द वास्ते नहीं कई मर्दों के वास्ते बनया हो उसके घर के आप जी को पता एक दिन बारिश हो रही थी अपने घर में बैठी सी गाहक कोई नहीं आया किसी गाहक का इंतजार कर रही है तो अचानक बारिश के दरवाजा किसी ने खड़का दिता। जब दरवाजा खड़काया तो देखिया कि एक बाणा पाया एक चोला पाया उन्हें सोचा भी लोगों तो बचता बचा चोला पा के आ गया लोगों तो बचता बचा अपने आप में उन्हें एक चोला पा के आ गया चोले से लटो के आ गया। जदों आया हूं वो गनका जिहड़ी सी वो अपने तन में वेचण की तैयारी कर रही थी तन में उन्हें सुपुरद कर दी तैयारी कर रही थी लेकिन वो महापुरुष ने जदों अपनी रहमत भरी निगाह के नाल उन्हें देखिया ना वो गनका का अंदर बदल गया वो गनका का अंदर बदल गया। तो एक मैं इतने बेनती करा जे किते महापुरुष की नजर किसी भैड़े इंसान ते पै जावे उन्हें देवता बना दिंदी है ते जे किसी विकारी मनुख की निगाह किसी शरीफ औरत ते बना पै जावे ते उन्हें गनका भी बना सकती उन्हें गनका भी ए उहदी निगाह जी ओ महापुरुष ने अपनी रहमत भरी निगाह ने देखा वह अंदर बदल गया उन्हें चलो तोता दिता उन्हें तोता दे के क्या कहते धीए इनू मैं राम राम बोलना सिखाया अमृत वेले उठी ए अगे बोलेगा तू पिछे बोलेगी। चलो जी वह गनका जी सी ना वो राम नाम का सिमरन करती हुई जी सी ना वो पतित तो जी सी वो पावन होगी वो पवित्र होगी। महाराज पहली उदाहरण जी है ना वो महाराज ये कहते हैं मन रे जे गनका हो सकती है तो तू ही आ महाराज कहते मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनका सी उदरी ताको जस उरता।

0: दूसरी उदाहरण महाराज दिंदी है त्रिविधि। त्रिविधि का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आया होया, राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रि प्रहलाद, त्रि ते प्रहलाद दोवां का जिक्र आया। ते प्रहलाद आप जी रोज पढ़ते हो, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज, हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। हुण इह त्रु कौन है? त्रु दे पिता का नाम है जी उतानपाद। इहदियां दो घरवालियां, एक घरवाली जिहड़ी पहली है ना वह निहायत ही शरीफ है और भोली है, वह उहदी पट राणी है। तो दूसरी उहदी उहदा नां है सुनीति, जिहड़ी पहली है। जिहड़ी दूजी है उहदा नां है सुरुचि। हुण ध्रुव जिहड़ा है छोटी उम्र का हैगा, वह बाहरों अपने साथियों के नाल खेड़दा खेड़दा घर आया। जदों घर आया तो प्यो तो नहीं ना मतरिया हैगा, प्यो तो सका ही है ना। प्यो ने उन्हूं प्यार दे नाल उन्हूं चक लिया। जदों उन्हूं चक लिया तो जिहड़ी सुरुचि सी जिहड़ी मतरेई सीगी उन्हूं मन विच गुस्सा आया। उन्हूं मन विच गुस्सा आया तो उन्हें ध्रुव की बांह फड़ के अपने घर वाले भी उहदे प्यो की गोदी तो हेठां ला के उन्हूं कह दिता, जे तू इहदी गोदी विच बैठना सी ना तो मेरे पेट चों जन्म लैना सी, मेरे पेट चों जन्म लैना सी। ध्रुव हुण पांच कु साल का बच्चा, पांच कु साल का बच्चा रोंदा रोंदा डुसके लैंदा होया जिहड़ा सी ना सिसकियां लैंदा अपनी मां को गया, तो मां नूं जाके पुछदा, मां मैनू ये दस तू इस घर घर की राणी है जां नौकरानी है। वह मां कहंदी कहंदी पुत्र है तां मैं राणी, लेकिन मैं कोई बंदगी नहीं की, कोई मैं भगती नहीं की। अगों फिर ध्रुव पुछदा कहंदा मैनू यह दस किहड़े तरीके दे नाल मैनू मेरे प्यो का राज मिले। हुण मां बड़ी सियाणी सीगी, जे अज की मां हुंदी कहंदी पोता तेरी गल है, चल फलाने वकील को चलीए इनू बंदा बनाइए, तू एदा ही पुत है, डीएनए चेक कराइए तू एदा ही पुत है, तू तेनू राज मिलना ही मिलना। लेकिन मां बड़ी सियाणी सी, वह कहंदी है कहंदी पुत जे तू राज लैना चाहना ना ते परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी कर, परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी कर। मैं इत्थे एक बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब दे इक बचन आउंदा, जे सिमरत सब किल बिक नासहि पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो कूता माता की। तू कहंदे उहदे सिमरन दे विच जुड़। मैं इहदे अर्थ यह करदा हुन्ना, जे सिमरत सब किल बिख नासे पितरी होए उधारो, मां कहंदी आ पुत्र तू मेरे घर विच पैदा होया, तू इन्नी कु बंदगी कर इस धरती ते आया कि तेरे जो पुराने बजुर्ग मरे हुए पुत्र उन्हां दा भी उधार हो जावे तेरी बंदगी दा। और ये हुंदा जी, ये हुंदा जी, मैं तुहानू एक साखी ना जोड़ा। गुरु रामदास जी महाराज गुरु अमरदास जी दे घर दे जवाई बने, ते जवाई बने ते लाहौर तक ये गल जिहड़ी सी पहुंच गई भी जिन्हों असी इथों गलियां चों तोड़ दिता सीगा, वह गुरु अमरदास माफ करना गुरु अमरदास जी के घर का जवाई बन गया। तो ताया नू चाचिया नू भूआ नू सारिया नू प्यार आ गया। कुदरती गल है जी, हो जाता इदा। कहिंदे चलो जाके देखिए साडे घर का बच्चा वै, उस घर का जवाई बनिया, गुरु नानक दे घर का जवाई बनिया, गुरु नानक की जोत जिहड़ी तीसरे जामे दे विच जाके टिकी उस घर का जवाई बनिया। साडे पुत्र की तो जिहड़ी है वह पौर बड़ी होवेगी, उहदे आसे पासे नौकर होणगे, वड्डा घर होवेगा। वह आए है जी मिलन वास्ते, जदों मिलन वास्ते आए आ गोइंदवाल साहब की धरती ते बौली साहब की, बौली की सेवा चल रही है। जदों बौली की सेवा चल रही है उन्हां दे लागों एक नौजवान लंघिया, उन्होंने नौजवान नूं आवाज मारी पुत एक भाई जेठा है, एक भाई रामदास है जिहड़ा कुछ साल पहला लाहौर की धरती तो इत्थे आया, असी उन्हूं मिलन आए हां। जदों यह गल सुनी ना तो उस नौजवान ने पिछा जिहड़ा सी मोड़िया, पिछा देखिया, जदों देखिया तो उन्हें पहचान लिया, यह तां मेरे बजुर्ग है, यह तां मेरे घर दे ही है। उन्हें टोकरी एक पासे रखी तो उन्हां दे पैरां नूं उन्हें मत्था ना टेकता। जदों मत्था टेकता तो मत्था टेक के कहा कहिंदे मैं ही तुहाडा जेठा हाँ,
1: ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇਠਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਧੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਧੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਧੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਕ ਨਾਸੇ, ਪਿੱਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਪਿੱਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਕਰ ਸਸੁਰਾਰ ਬਸਿਓ ਨੇ ਭਾਗਾ, ਇਸਨੇ ਤੋ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਚਤਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਕਰ ਸਸੁਰਾਰ ਦੱਸਿਓ ਨਿਰਭਾਗਾ, ਇਸਨੇ ਤੋ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਈ, ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਚਤਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਨਮੇ ਬੰਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਗਿਰਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੰਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਭੋ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਿੰਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਾਜਤਾ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਭਿਓ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਪਿਓ ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ

0: परिपूर्ण परमात्मा हर एक दुखां नूं कट्टण वाला जी, तू उन्नू क्यों महाराज कहिंदे भुला के बैठा होया, तू उन्नू क्यों भुला के बैठा होया है।
1: जब हो शरण गहो कृपा निधो, गाजो गराहा ते सुता।
0: हाथी यह सरापिया होया सी पिछले जन्म का, ते ए वरुण देव दे तालाब दे विच बड़िया, वरुण तालाब च बड़िया, ते इनू सराप मिलिया सीगा, ते इनू तेंदुए ने पकड़ लिया, ते इसने की कीता अपनी सुंड दे उपर कमल दा फुल रखिया, ते इहदे कोल इन्नी शक्ति नहीं सीगी, ताकत नहीं सीगी वी तेंदुए तो अपने आप नू आजाद आप करवा लैंदा, ते इन्हें कमल दा फुल अपनी सुंड ते रखिया, ते चलो परिपूर्ण परमात्मा ने वह जड़ियां तेंदुए दियां जड़ियां फाइयां पाइयां सी ना इन्हू, को फाइयां परिपूर्ण परमात्मा ने तोड़ दित्तियां। ते महाराज कहिंदे है कि वह जड़ा हाथी है ना वह तेंदुए तो बच गया।

तेरे ते बख्शिश करेगा ना। बड़े ध्यान ना सुनो जी, बाणी पढ़न वालियां रूहां दा रूप भी होर है, उन्हां नू रंग भी होर चढ़दा जी। जिन्हों महाराज कहिंदे जाको हर रंग लागो, इस जुग में सो कहियत है जिन्हों हरीदा रंग चढ़दा। उहदी जां इदां सिंपल कह लीए जी, वह जिहड़ा इंसान है ना वह फिर दुनिया तो वखरा हो जाएगा जी। उहदी चाल भी वखरी हो जाएगी, उहदी ढाल भी वखरी हो जाएगी, उहदा उठना भी वखरा हो जाएगा, उहदा बैठना भी वखरा हो जाएगा। ए मन मेरिया तू क्या लै आया, क्या लै जाए श्री राम। सत्संग जी आपां उही पता करना सी, रूप रंग प्यार हरस्यो। एक छोटी जी बेनती मैं आप जी ना करनी चाहूंगा, समा दो ढाई मिनट बाकी है। मेरी पीरी मार्च कल दा दूजे पड़ा दा शुरू होया, तो मैं बेनती करा मेरी पीरी, मेरी ते पीरी, पीरी होगी बंदगी ते मेरी होगी राजसी ताकत। इदा ही है ना, दरबार साहब के सामने अकाल तख्त साहब। बड़े ध्यान में सुनियो, दो तीन प्रमाण दियांगा। जो तो प्रेम खिलन का चाओ ए है पीरी, सिर पर तली गली मेरी। वो गुरु नानक साहब का फलसफा, पहला प्रमाण एक बचन पढ़ दिया, भगतां की चाल निराली, चालां निराली भगतां केरी, बिकम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तस इसमा बहुत ना ही बोलना। इथे तक पीरी है, अगे खन्यो टिक्की, ठंडा कितों आ गया जी, ठंडियो तिखी वालो निकी, ए है तेरी जड़ी है, ए मिरी आ गई महाराज कहते, ए मिरी है। और एक दो प्रमाण दिया आप जी ने जी, महाराज कहते हैं बाबा फरीद जी कहते, वाट हमारी खरी उड़ीनी, ए बंदगी है, वाट हमारी खरी उड़ीनी, खन्यो तिखी, खन्यो तिखी बहुत पीनी। मेरे कहन तुम पाव, ए जरा मीरी ते पीरी है, ए जरा संत ते सिपाही दा है, ए धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस प्रैक्टिकल किया। लेकिन एदा जिक्र उन्हां तो पहला गुरु नानक साहब की आमद तो पहला भी बाबा फरीद जी की बाणी में तुसीं देख सकते हो, क्योंकि रूहानियत है ते नाल राजसी राज करन दा मजा ही कुछ होर है। जे रूहानियत नहीं आना ते कला राज कर रहा ते उन्हूं फिर गुरु नानक साहब पता की कहते हैं, महाराज कहते हैं राजे शी मुकदम कुत्ते। उन्हूं महाराज ने कहा, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नंगा पायन कहो, रत पुत प्यो चट जाओ। जे तेरे कोल कला राज है, तेरे कोल रूहानियत नहीं है। मेरी बेनती है सत्संग जी, ये मेरी पीरी का जिहड़ा संकल्प है ना, इस नूं असी वध तों वध अपने जीवन में लैके आईए, और अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित होइए, एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे होइए। जे असी एक प्लेटफॉर्म ते अपनियां ईगो भुला के इकट्ठे हो जावांगे ना, ते दुनिया का कोई भी ऐसा कारज नहीं गा जिहड़ा सिख जिहड़ा वो नहीं कर सकता। सिर्फ अंदर एक दृढ़, अंदर एक संकल्प जरा होना चाहिए। सो मीरी पीरी पड़ा जिथों भी चलता होया केसगढ़ साहब पहुंच रहा, हाथ जोड़ के बेनती है, वद तो वद कुछ अपनी शमूलियत करो, और मन विच ये तहिया करो कि असी अकाल तख्त साहब नूं समर्पित होना है। इनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, हुईयां भुलां चुकां खिमा करनियां। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी दा तहे दिलों धन्नवाद। इस स्थान दे सत्कारयोग हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी होरां दा तहे दिलों धन्नवाद। आईयां हुईयां संगतां दा धन्नवाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा कोटानकोट धन्नवाद। आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ के दास आप को खिमा दा जाचक होवेगा जी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
3: हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहेब खेखड़ा वाले को मिले, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है, और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था, और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुणात्मा, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जवारी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप दो नंबर का काम करोगे। दो नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपए के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के, 30-30 रुपए के। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ, आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली, फिर झाड़ फूक वालों के फंस गया, लाखों रुपये खराब किए, अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपया, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपये लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे के को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो इतना अभी भोगने बाकी है। और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं, जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरा सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साई, इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा कैसा है उसको निराकार बता रहे हैं सभी सदग्रंथ हमारे, तो सभी पवित्र धर्मों के, उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे हैं। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और सह शरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मलो की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व कष्ट हरणहार, अंगारी बंभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है, उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। उनका नाम कबीर देव है, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वो परमेश्वर इस कलियुग के अंदर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को भारतवर्ष की पवित्र भूमि पवित्र काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और उनको एक निसंतान जुलाहा दंपति उठा ले गया था। परमात्मा लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उस अपने मुंह बोले माता पिता के जो पैतृक कार्य था जुलाहे का, उसी कार्य को करने लगे, और वही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बनारस में धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो, यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का जो स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल भगवान है। और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म की हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं, हम उस परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के शरीर से हम बाहर आए हैं और हमें आत्मा का रूप परमात्मा ने ही दिया है। हम परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। जैसे किसी माता पिता का कोई संतान, बेटा या बेटी, किसी भी कारण से कुमार्ग पर चल पड़ता है, माता पिता को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसके साथ कितनी आपदाएं आएंगी, इसके ऊपर ये कितना कष्ट उठाएंगे, जिस कारण से वो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार भी उन बच्चों को फिर से हम सुमार्ग पर लाएं। उसके लिए उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी सामर्थ्य के आधार से वो पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो नालायक बालक नहीं मानते हैं, तो भी माता पिता चिंतित ही रहते हैं, उनके भविष्य का उनको पता होता। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण परमात्मा, हमारे लिए सदा चिंतित रहते हैं कि काल ने इनको यहां त्रिगुणमयी माया का नशा करा दिया और इस काल के ब्रह्मांड रूपी कुएं में, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये त्रिगुणमयी माया रूपी भांग डाल दी काल ने, और इस भांग के नशे में आप जी सभी के सभी परमात्मा को भूलकर इसी गड्ढे में पड़े हुए हो। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तक कुआ भांग पड़ी। अपुन आत्माओं, आप जी यहां पर जिस वस्तु की डिमांड करते हो, परमात्मा से जो कुछ भी मांगने आते हो, वो क्या मांगते हो? जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक क्या डिमांड करते हो? निसंतान संतान की इच्छा लेकर ही यहां आते हैं, और कोई निर्धन है जिसके पास धन नहीं है, वह केवल धन ही मांगने आता है। किसी को कोई बीमारी, कष्ट, रोग या कोई अन्य प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, या देव के कारण कोई कष्ट है, तो उसकी निवारण की इच्छा ही लेकर आते हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आप जी को ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप ये डिमांड भूल जाओगे। कौन सी डिमांड? नंबर एक संतान की, और नंबर दो घने धन प्राप्ति की। तीसरी जो आपकी इच्छा है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ बाधा है, कोई देव का प्रकोप है, इसका निवारण आपका ठीक है, ये अवश्य इसके कारण भी यहां आने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। अब सीधे से शब्दों में ये दास ये कहना चाहता है कि कोई भी प्राणी किसी भी आशा या इच्छा या किसी भी कष्ट या संकट के कारण परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं, धन्य है वो प्राणी और धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि यहां आने से आपको तत्व ज्ञान होगा, पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, सभी कर्मों से आप परिचित हो जाओगे, और फिर आप जिस इच्छा को लेकर आए हो उन इच्छाओं को भी परमात्मा से पाओगे, वो भी पूर्ति होगी, लेकिन वो कितनी होगी? जो आपके हित में होगी। जो आपके हित में नहीं होगी वो इच्छा आपकी यहां पूर्ण नहीं होगी। भले ही आप जी ये सोचते रहोगे कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, वो आपकी अपनी सोच होगी। परमात्मा क्या करेंगे वो परमात्मा ही जाने। जैसे एक रोगी व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और वहां जाने के बाद फिर वो डॉक्टर को समर्पित हो जाता है, वो डॉक्टर फिर जो भी ट्रीटमेंट करता है उस मरीज के हित में ही करता है। अब वहां पर मरीज अपनी नहीं चला सकता, वो रोगी यदि अपनी चलाता है, वो चाहता है कि मेरे अनुसार ही डॉक्टर कार्य करे, तो डॉक्टर उसकी जायज जो कोई भी होगी इच्छा आवश्यकता उसी को पूरी करेगा, नहीं तो वो अपनी ही क्रियाओं को करेगा चाहे मरीज को बुरा भी लगे। अब जैसे डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी जान जावेगी और टांग काटनी पड़ेगी जिससे इसका जीवन बचेगा, तो डॉक्टर उस कार्य को करेगा ही करेगा। आपकी राय अवश्य लेगा कि तू मरना चाहता है या जीवन चाहता है, तो जीवन चाहता है तो तेरी टांग काटनी पड़ेगी, तो फिर वो मरीज भी स्वीकृति दे देता। वैसे तो रोगी नहीं चाहता कि मेरी टांग कटे, लेकिन जीवन रक्षा के लिए वो टांग कटवाना भी उचित ही समझता है और बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप यहां परमात्मा के दरबार में आए हो और ये वो हॉस्पिटल है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को नाश करेगा, समाप्त करेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग आपका नष्ट नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो संत इसके सभी विभाग पत्तों सहित बता देगा सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका भी यहां आकर करते हैं, एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, एक नेक शिष्य का रोल भी वो परमात्मा स्वयं ही करके दिखाते हैं, और एक अच्छे कवि के रूप में भी वो सुप्रसिद्ध होते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाते बोलते हैं जिस कारण से वे कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर ने बताया है अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ऊपर को जड़ तो वो परमात्मा स्वयं है जिससे सभी ब्रह्मांडों का धारण पोषण होता है, जैसे वृक्ष को जड़ से ही पूरा आहार मिलता है, टहनी तना डार पत्ते सभी उसी से आहार प्राप्त करते हैं, वो सबका धारण पोषण करने वाला होता है, तो वो तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म स्वयं कबीर देव जी हैं। जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो तना होता है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में तीन पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी परम अक्षर पुरुष बताया है जो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है। तो अक्षर पुरुष वो तना है और मोटी डार जो है वो सरपुरुष है, सरपुरुष जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। उस काल के यानी सरपुरुष की फिर तीन, उस डार के तीन शाखाएं हैं, उसके पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात रूप हम संसार। तो यहां बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे इस अज्ञान रूपी अंधकार को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात इसको उस तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए और ये सोच ले कि मैं उसकी शरण में हूं। गीता ज्ञानदाता कहता है वो परमेश्वर कोई और है, मुझसे भिन्न है, उसकी जानकारी मैं भी नहीं रखता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके, इस आश्रय करके यानी मैं जो कह रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो जो ज्ञान बताओ फिर उसे सुनो, और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म से पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से और सभी प्रकार के कर्मों से वो परिचित होते हैं, वही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसको जानकर और फिर अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा का दुख और मरण माने मृत्यु, के जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा है फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, ऐसी अनमोल वस्तु क्या है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है। तब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर जरा और मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जरा माने बुढ़ापा, पुनात्माओं जब तक ये जीव किसी कष्ट को महसूस नहीं करता तब तक ये किसी के कहने से भी मानता नहीं, और जब इसके ऊपर आपदा आ जाती है फिर ये चिल्लाता फिरता है। आप पुनात्माओं जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनका अनुभव सुनो, उनके साथ अब क्या बीत रही है, पहले वो भी युवा थे, एक पल भी उनको चैन नहीं था, सारा दिन दौड़ धूप में रहते थे और अब वृद्ध अवस्था में उनकी कितनी दुर्गति हो रही है, और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता और मृत्यु भी होगी, वृद्ध अवस्था कोई नहीं चाहता वृद्ध अवस्था भी होगी, तो ये जो हम नहीं चाहते जो कष्ट वो हमारे ऊपर अवश्य आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये दुख का मूल है और ये दुख मिटे कैसे, ये मिटेगा जब हम सतलोक में चले जाएंगे, जो जरा और मरण वही मिटेगा, क्योंकि सतलोक में आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी जैसे हम यहां रह रहे हैं, ऐसे ही वहां हमारा परिवार होगा और हमारा शरीर बहुत सुंदर होगा, एक तत्व का बना होगा, उसमें नाड़ी और ये स्नायु आदि नहीं होते, शुक्रम अकायम असनाविरम होता है यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ, उस शुक्र से नहीं वहां पर वचन से सृष्टि बनती है, अपना परिवार बनता है, और वहाँ ना वर्द अवस्था आती है कभी और ना मृत्यु होती है।
4: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
5: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नु 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
3: यहाँ इस पृथ्वी पर आप कितना ही बड़ा व्यवसाय बना लीजिए और कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए और कितना ही बैंक बैलेंस बना लीजिए, आपके साथ वो धोखा है। आप उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, आप उसको भोग नहीं सकते, तो फिर सारा जीवन बर्बाद करने का औचित्य क्या है आपका? मूर्खता, अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता। और जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर आप परमात्मा से एक ही प्रार्थना किया करोगे, हे परमेश्वर हमारा पीछा छुटवाओ, हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए नष्ट करो, हे प्रभु कहीं फिर से जन्म ना हो जावे, क्योंकि हम यही रहना चाहते हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते। कंपलसरी होगी वह तो बाई फोर्स होगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहां आशा ता बासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए, अब जहां आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहां परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहां आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूक करवाने की, हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सबतः पूर्ण होंगी। जैसे किसान गेहूं बीजता है, अपने आत्माओं आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए, इसलिए आपको रह रहकर बुलाया जाता है ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका ये होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, और फिर क्या होता है, अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है और बाली में फिर गेहूं होते हैं, पहले पौधा उगता है। तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी, ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था, और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया, उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो भगवान उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते। और आप वहां धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहां आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था और भूस का कमरा वैसे ही भर गया, जिसकी उसको इच्छा नहीं थी लेकिन तो भी मिल गया, पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहां पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी, उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी और आपके संकट निवारण, तो उस भूस की तरह अपने आप ही, ना चाहते हुए भी परमात्मा वो निवारण करेगा और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं के भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से सोचना, यदि कोई अनजान व्यक्ति गेहूं को परिपक्व ना होने दे और पशुओं के चारे के उद्देश्य से उसको कच्चे को काट काट कर चराना शुरू कर देता, खिलाना शुरू कर देता है, पशु तो पल जाएंगे, आप भूखा मरेगा फिर। तो कहने का भाव ये है कि आप जी यहां जो मांगने आओगे वो क्या मांगोगे? मोक्ष। आपका उद्देश्य मोक्ष हो और उस मोक्ष के साथ साथ आपको जो संसारिक सुविधाएं आपको चाहिएंगी, आपके भाग्य में ना होगा तो भी भगवान देगा। आपके भाग्य में कोई आपत्ति होगी, मालिक वो नहीं देगा। आपत्ति का अर्थ है, जैसे कई बहनें आती हैं संतानों उत्पत्ति की, संतान की डिमांड करने, परमात्मा वो रजा भी उनको बख्श देता है। कई एक स्थिति ऐसी आती हैं जो परमात्मा की रजा होती है लेकिन प्रार्थना करते हैं, आते हैं बहन बेटियां कि ऐसे ऐसे जी हमारा गर्भ गिर गया, हम उनको सांत्वना देते हैं, बेटी भक्ति करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करती हैं 6 महीने साल के बाद कि जी दूसरा भी ऐसे ही खराब हो गया। उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से वो बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं। और मान लीजिए वहां उनको कृपा हो भी जा, कोई संतान उसके ठीक ठाक उत्पन्न होगी और वो संतान उसकी दुश्मन हो जाए आगे चलकर। दुश्मन कैसे हो जाते हैं, जैसे एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उन्हें उस लड़के ने अपनी पत्नी को मारा पीटा, दहेज के बारे में उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। वो माँ भी बाप भी बेटा भी और बहन भी सारी जेल में। अब यहाँ आप विश्वास रखना इस परमात्मा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा परमात्मा ही होता है। हम जीव संज्ञा से कुछ भी मांगते रहे वो नहीं देगा। जैसे उन बहनों के वो गर्भपात हो रहा था वो परमात्मा का ऑपरेशन था। यदि कोई ऐसी नालायक संतान आपके भाग्य में थी उसको निवारण कर रहे थे, भगवान को दोष नहीं होता। वो अपने हिसाब से उनका जीवन संस्कार आपके संस्कार से काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे। पुणात्माओं, आप जी भगवान के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल माइनस है, माइनस। अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो अज्ञान से भर रखा हमारे को। आप जी परमात्मा की तलाश में खोज में घूम रहे होते हो। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर हमारी सतीथी को स्पष्ट किया है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा से मिलने वाले लाभ के लिए ये प्राणी ना जाने कहां कहां भटकते हैं। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जब मेरा कोई संत मेरे संत की शरण में जब आ जाते हैं तो उनके सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं उनके, धीरे धीरे सारे कार्य सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए बताया कि राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुणात्माओं, आपका उद्देश्य जो है वो बदल जाना चाहिए इस ज्ञान के आधार से। रही बात संकट निवारण की, ये तो नहीं रहेगा आपके ऊपर। उसके लिए थोड़ा सा आपने धीरज रखना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है और उसमें गड्ढा बनाकर उसमें सिंचाई शुरू कर दी जाती है, सैकड़ों घड़े पानी के उसमें डालते रहते हैं, एक दो तीन वर्ष चार वर्ष तक, फिर वो पौधा पेड़ बन जाता है। और जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है वो फिर फल देता है, और इतना फल देता है कि आप भी खा लो, पड़ोसी भी ले जाएं, साथ वाले घर मकान वाले और रिश्तेदारों को भी भेज देना, वो खत्म नहीं होंगे। कहने का भाव ये है कि आज तक आप जो साधना कर रहे थे वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे थे, आज का अर्थ है कि जो पहली बार परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आते हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे पहले। और वो साधना क्या थी, आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल बो रखी थी, किक्कर बो रखी थी, और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है। आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उसकी कर की बबूल की पूजा कर रहे थे, आम जान कर, आम जानकर यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। तीनों देवा काल हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चुके समझियो सबका हु आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं और यही तीनों इस काल के पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनकी पूजा करने वाला भी काल के ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हो ये सब काल के अंतर्गत हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे, जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे आपने बबूल बो रखे थे, और जो कबीरपंथी हैं नकली बने हुए हैं कबीरपंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सच साधना नहीं है, वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं और आपने वो किक्कर बीज रखी है। सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर दो अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत् है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो पुणात्माओं, आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे, आपको ज्ञान इसलिए करा जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कहीं आप जी के आम के पौधे को उखड़वा के और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना भिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़ कैर किक्कर इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे, यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा समय आए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसकी रंग ठाट कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये आपको सत भक्ति रूपी सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को, कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौचुक्के रह जाएंगे कुछ दिनों के, यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे, आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये तीन ताप भी नाश नहीं हो सकते, जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितर बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है। वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर किसी की भी साधना से वो आपका संकट निवारण नहीं हो सकता, और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब

और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए। अब वो वहां इकट्ठे हो गए, वो और ज्यादा उद्वस्तार दिया उन्होंने। पहले तो एक एक दो दो था, कई कई हो गए। उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहां बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपने भूत मारा भेज दिए। अपन आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत भेजते नहीं कीता, हम अपने भगत का प्रबंध कर देते हैं। कैसे? जैसे कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगाते ही मच्छर सारे भाग जाते हैं, वो फिर दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा कबीर जी का जो सतनाम है, सच्चा नाम आपको दिया जाता है, प्रथम मंत्र भी और दूसरा मंत्र भी, ये ऑल आउट है। और जिस घर में ये ऑल आउट लग जाएगी, वो मच्छर फिर दूसरे हैं गजाएंगे। भाई हम जंतर मंतर नहीं करते, और उनको भी चाहिए कि वो ऑल आउट लगा ले, वो भी ले जाएं अपना मंत्र यहां से, उनका भी भाग जाएंगे फिर की तरह। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को ना पहचान कर हम ऐसे भटक रहे थे। प्रसंग चला था कि भी कोई तो संतान ही मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, उसके लिए परमात्मा आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं। भाई क्या मांगो, कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। ओए होए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया भगवान कबीर साहब ने। आप एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे नो बताओ? मान लीजिए पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे? फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे। संतान तो वो होनी नहीं, क्योंकि यहां नहीं है तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहां सब कुछ दे सकते हैं। यहां आपको दिखाते हैं 27 साल की उम्र में। अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हमें क्या डिमांड करते हमें? कल एक भगत का फोन आया, जी हमारा 27 साल में दया करी भगवान ने, और फिर बुंडा सा मुंह करके ने कहा जी इकट्ठी दो लड़की होगी। मैं कहा तो मैडम मांगने संतान आए थे, ये बुंडा मुंह क्यों कर रहा है? अब तुम मांगण तो संतान आओ। तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहे तो भी अच्छा, दो लड़की इकट्ठी दे दी। और फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम, वो यहां से चले जाते हैं तो संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है, उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो वो बुरा सा मुंह करके कहती है पता नहीं भगवान के घर में के कमी आएगी, यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तेक चाहिए थी, फिर वो बताओगी उड़ फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर नू पुत्र हो जाते हैं, फिर वो वहां धक्के खावेगी। तो पुण्यात्मा अंत में वो बहन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, संतान नहीं होती। इस काल के जाल को समझना, फिर वो क्या बनाता है ये काल, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है कि मेरे संतान होती, मेरी इज्जत हो जाती, इस तरह। फिर उसको क्या बनाता है ये काल, भगवान अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि में भेज देता है, और फिर कहता है ले अब पूरी कसर काट ले अपने संतान उत्पन्न करने की, आठ आठ एक के टाइम में जमेगी, और अगले जन्म में फिर सूरी बनावेगा।

0: बारह बारह कट्ठे उत्पन्न करेगी, ले छक ले तू उत्पन्न करके। तो पुणात्मा और परमात्मा के इस ज्ञान को समझना चाहिए, आधा संकट दूर हो जाएगा आपका जो बेमतलब की टेंशन बनाए फिरते हैं। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। एक लाख पुत्र थे रावण के, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो एक लाख भी मर गए। आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्वज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं। तो इतने हाथियों को अपने द्वार पर बांध कर राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। अब परमात्मा उसको कहते हैं, बोले प्राणी, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी। दर माने द्वार पे। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। ओए होए, जो तुम इस कुमत में कुभद में लगे रहते हो सारा जीवन, कार कोठी बनावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, भगवान की भक्ति करते नहीं, जिसको जो भी मिलना था, कोई सेठ बना है अपने पूर्व जन्म के संस्कार शुभ कर्मों से, कोई अच्छा राजा बना है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है वो भी अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से पुण्यों से, और यदि सत भक्ति नहीं करता है तो अंत में उसकी कैसी दुर्गति होगी, जैसे जुए में हारे हुए जुआरी की होती है, वो हाथ पीटता जाता है, अरे नाश हो गया खूब सब कुछ, क्या लुट गया। कहते जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी, कहे कबीर सुन अंत की बारी। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। अब बात यहां आती है, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर परमात्मा की शरण में कमी काहे की ना, किसी प्रकार का भी अभाव आपको नहीं रहेगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। और आप जी को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परमात्मा आप प्रजा नहीं बख्श रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो और फिर देखना कैसे। कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं, जी आपने जोत बोला था मैंने जोत भी चढ़ा दी, आप जी ने पाठ के लिए कहा था मैंने पाठ भी करा दिया, और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो, ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादाहीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। पुण्यात्माओं, अभी आपको बता, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है, वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है, भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए, जितनी भक्ति दान धर्म सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
1: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
0: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशन तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 71718 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सास जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई। तुदापे सृष्ट सब उपाई जी तुदापे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तूं दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले।
मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की हे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जापता

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाथ दा मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मुहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी के की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आरालम रंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेवना पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो संकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता
जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै हैं ताकि काल निकट न हैं। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह च सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़िआईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। आनंद

0: ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैजो पंथ की जीत। श्री साहिब जी सा

राम कहत बंधन तेह छूटा। महिमा नाम कहाँ लो वर्णौ,

अजामल पापी जग जाने निमुख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैपी उतर पार अजामल पापी जग जाने

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।